मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमा मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर दिल दिलगीर लेकर, लुटी जागीर लेकर जल तकदीर लेकर क्या करोगे।

0: फिर लेकर क्या करोगे क्या करोगे।
1: हेलो हिंदुस्तान का तेरा तू। हेलो मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

वाह महफिल में तेरे हुस्न का, तेरे हुस्न का शोला जो भड़के, शोला जो भड़के, पहलू में बेकरार दिल बेकरार।

इस भजन में ये वर्णन है कि भगवान का नाम लिए बगैर हमारा जीवन अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है, और यही समझाने के लिए कुछ बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं जिससे ये बात स्पष्ट होती है, समझ में आती है।

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voormaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

उजाला रेडियो पर ये सॉन्ग अभी अभी खत्म हुआ है और उजाला रेडियो के जरिए अगर आपको जो भी कामकाज दिलाना है स्टूडियो मेल ना info@ujala.net

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, चाहे जहां पर उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुनते होंगे, बहुत ही प्यार से दुलार से यहां से प्रोग्राम हम बना रहे हैं आप सभी के लिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9 20 9 9 7, और हमारा दफ्तर खुला रहता है सोमवार से लेकर शनिवार तक दिन में 10 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक।

वेल वेल यार ए हम भी कुछ बनाएंगे तेरे घर के सामने। बोले कि घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, लता एंड मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। एंड इस बार कितना प्यारा वादा है यार।

वेल वेल यार, कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों में, और इस तरह से लता एन मोहम्मद रफी साहब के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे।

Well, तुम जो मिल गए हो इस तरह से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे, और इस बार 100 साल पहले यार

100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल रहेगा, एंड इस बार तुझे जीवन की डोर से बांध लिया यार।

दिल ने दिल पुकारा, वही बात हो गई और बोले जो डर था वही बात हो गई। कितना मोई कितना बिसाओ, अति सुंदर गीत जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने।

वेल वेल यार, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा जो मिल गया होता। और इस तरह से लता और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप लोग सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम। हमारे प्यारे सुनने वालों,

धीरे धीरे चल और बोल कहीं हो ना जाए रात। और इस तरह से लता और मोहम्मद रफी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुनमलो उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9204909007 पर आप लोग तार कर सके हैं हर एक काम काज के लिए यार। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो किशोर कुमार के आवाज में गाना इस तरह से आप लोग सुनेंगे।

वेल वेल यार चूकर मेरे मन को तूने क्या किया इशारा, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड वो भी किशोर कुमार की आवाज में। हमारे प्यारे सुने वालों कितना मोई अल्फाज, चूकर मेरे मन को यार, इस बार दिल क्या करे।

हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे और तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे। फिल्म हाथ की सफाई का गीत और गीत के गाने वाले किशोर कुमार एंड लता जी, और ये उजाला रेडियो है। एक और गीत आप सुनेंगे अब प्रोग्राम में, अमित कुमार एंड अनुराधा पौडवाल से।

उजाला रेडियो पूरा हॉलैंड में डीएबी प्लस पर और दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए उजाला.nl।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम का इस भाग अगर आपको पसंद आए तो सुनते ही रहना, हम यहीं पर फिर मिलेंगे। उजाला रेडियो पर तू जाने है तो।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

0: आज
1: और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए नई दलांत और सूरी नाम से समस्त परिवार सरजू सभी भाइयों और बहनों सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल बुध को 90 साल के आयु में नई खंतक यार और सभी भाइयों और बहनों सुलभा चान नान मीन मीला इंदर और स्वर्गीय रुदि स्वर्गीय क्रिस और स्वर्गीय दत्त की बहन दो छोटकू के बड़की चार भाऊजी के ननद स्वर्गीय पिता श्री कुंज बिहारी सरजू और स्वर्गीय माँ श्री राम प्यारी सरजू के बेटी और सभी लड़कन के फुआ मौसी नानी और आजी अम्स्टरडम के फ्लीफो हाउस में विधवा राम कुमारी द्वारका सरजू की मृत्यु हो गई है जो कि स्वर्गीय श्री जयदेव द्वारका की विधवा थी और श्रीमान जगदेव द्वारका को लोग द कॉम के नाम से पहचानते थे और उन दिनों हौचाखरे द्वारका के मालिक जो था पहले सूरीनाम हौतन के निवासी थी। नीदलांत और सूरीनाम से परिवार सरजू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कल बुध को 90 साल के आयु में नई खंतक यार औत सभी भाइयों और बहनों सुलभा चान नान मीन मीला इंदर और स्वर्गीय रुदि स्वर्गीय क्रिस और स्वर्गीय दत्त की बहन दो छोटकों की बड़की चार भाऊजी के ननद स्वर्गीय पिता श्री कुंज बिहारी सरजू और स्वर्गीय माँ श्री राम प्यारी सरजू के बेटी सभी लड़कन के फुआ मौसी दानी और आजी अम्स्टरडम के फ्लीफो हाउस में विधवा राम कुमारी द्वारका सरजू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग कमल और रोसलिन के नाम से पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले हौतन के निवासी जो थी। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 2:30 बजे जात्र दखालफद्री किए जाएंगे। वैस्खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्त फुरसोरखिंग परिवार द्वारका और परिवार सरजू के दुख में शामिल है।

अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे. दिस टाइम फ्रॉम मिस्टर मुक्का फ्रॉम द फॉर्मेसी एक्सप्रेस इज अन कवर द फिल्म एनिमल एंड द ओरिजिनल इज गेजोंगन डोर बी प्राक मार गेवेल्डिग मूय गेकवर्ड डोर मिस्टर मुक्का. Ujala Radio, hey, Sunuwalo, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van je dag vandaag en geniet van de heerlijkste hits en de beste Ghana.

उन्होंने लगा है जो है इश्क या है वो इश्क जैसा कुछ या सोच मुद से या इन फिल्म फाइटर वाज दैट द स्टेम फ्रॉम शिल्पा राव मेलोडी इन विशाल शेखर एंड दिस इज एंटे इन द कैटेगरी ओ गॉड वन मोर रिमिक्स maar wel weer een hele fijne remix. Een prachtige cover. Organa kanami apa jaisa koi. Ja, het is er eentje die we allemaal wel kunnen meezingen.

क्या ये कहे और क्या ये करे, करता है सोचे ना समझे बिना। ये रिश्ते में फोन अरमान मलिक एंड अनन्या बिरला एड फिल्म जज्बाती है दिल।

आठ बजकर 8 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, यह है उजाला रेडियो और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। अख मुनी तो ओवर द क्लॉक फन अख वो चला है और यहां से हम आराम करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज लाइफ एंड आर क्यूआर के स्टूडियो रतनाम से। तहे दिल से स्वागत करता हूं आप जहां पर भी होंगी, जिस हाल में आप होंगी, जहां तक मेरी आवाज पहुंचते होंगे। तहे दिल से स्वागत है आप सभी को, रतन का प्यार भरा नमस्कार और अदा प्रणाम। आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये, और यहां से रात्रि में 11 बजे तक दिल की आवाज विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स और उनके साथ साथ भी कुछ दर्द भरे नगमाएं जो हमने आज की प्लेलिस्ट में सजा रखा है निकाल कर आप तक हम पेश करेंगे। हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके कामों काज के लिए फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आप उजाला रेडियो को तार कर सकते हैं और ऐप भी कर सकते हैं नाट्यूरलक क्यूंटी ओग मेल लीफर बेल्ट्यू एंड स्टूडियो मेल्च। ऐप करेंगे आप तो यहां स्टूडियो में आएंगे और स्टूडियो में दफ्तर के कार्रवाई तो होता नहीं। सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक आप अवश्य आपके हर एक कामकाज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते दफ्तर को आप टार कर सकते हो 020-9900-4-09-08-07। या तो आप मेल करें मेरे प्यारे सुनने वाला, आप मेल करें तो ये बेहतर होगा। लगातार 24 घंटे 7 दिन आपके फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत के खबरें के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते info@ujala.nl। मैं लैला का मजनू, शीरी का फरहा, और मैं हूं सबसे पहले और बाकी सब है मेरे बाद। एक प्यार भरा गीत लेकिन बहुत छेड़छाड़ है। लड़की को इम्प्रेस करना है और लड़की को इम्प्रेस करना है तो स्टाइल मारना पड़ेगा ताकि लड़की इम्प्रेस हो जाए। अपने आप को प्यार का, मोहब्बत का आप गुरु मानेंगे, उसे कहेंगे ताकि वो पहचान ले, पहचानेंगे पता नहीं। प्यारी चीज है, एक रूह है जो महसूस किया जा सकता है। कहने से प्यार नहीं होता है, लेकिन फिर भी गीत जो काफी खूबसूरत है, छेड़छाड़ सॉन्ग, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत। आनंद बख्शी जी महान कवि, इनकी संगीत तो काफी अमर है, बहुत सारे इनका लिखा हुआ संगीत आप पसंद करते हैं। लोग भूल जाते हैं ये लिखने वाले जिन्होंने कमाल के अल्फाज़े शब्द लिखा है, और हम उन्हें जानते हैं जो गाए हैं या तो बड़े पर्दे पर अपने चेहरे से इन्हें रूप दिखाया है। पेश करता हूं आज का ओपनिंग सिलेक्शन मेरे प्यारे सुनने वालों, महान कवि सॉन्ग राइटर आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत और किशोर कुमार की आवाज़।

या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, मेला लाज का मजनू और शीरी का फरहार। और क्या कहा उन्होंने कि पहले बनो निशाना फिर तुम तीर चलाना, थाम के अपने दिल को फिर तुम सामने तू चली आना, मुझसे बच के रहना नहीं तो बात बिगड़ जाएगी सारी रात कसम से, तेरे को नींद भी नहीं आएगी भूल ना पाओगी तुम मुझको, बहुत याद आओगी क्योंकि मैं लैला जो तुम हो का मजनू हूं और शीरीन।

לקחה הוא אגיד עשינו כפוג'רי קישור כמר כי אבס מהמני כיתב תקפש כי אחר אנ בקשיג'י מרי פיירי סנו עלו מהן קווי די זמן היא סוף על מוי לי שצריך סונג ג'ו הם פסן קרתי הם ג'ב היא אין קהלי כהו אגיד צלתי הם רידיו פר הם גון גונתי הם हम शायद गुनगुनाते भी नहीं हम गाते भी हैं रमूते दे इस मैन से नीच फरखेत मेरे प्यारे सुनो वालों लिखने वाले जो हैं एक गीत का दर्द है एक गीत का दिल है ये उजाला रे जो है मेरे प्यारे सुनने वालों और नामनित बाकी है सरे आठ बजने में जबकि हम आपको ले चलेंगे एक और गीत की ओर लड़की आपको पसंद करे ऐसे तो कोई बात नहीं या लड़का आपको पसंद करे ये भी कोई ऐसा बात नहीं हमेशा ऐसा ही होता है कि आप जिसे चाहते हैं पसंद करते हैं और वो प्यार से बातें अगर आपके साथ करें लोगों को ये महसूस होता है एहसास होता है कि वो प्यार है लेकिन प्यार का नाम उसे देने के लिए ये साबित होना चाहिए कि वो जो फीलिंग्स है एक दूजे के लिए या खास करके आप जो फील करते हैं क्या वो भी फील करते हैं क्योंकि ऐसा भी काफी बार हो चुका है कि ऐसा नहीं है फिर भी ये गीत काफी पॉपुलर है मेरे प्यारे सुनने वालों ये गीत जो मजरू सुल्तानपुरी ये आनंद बख्शी से कम नहीं है इनके लिखे हुए मैं यकीनन कह सकता हूं कि आप बहुत सारे नगमाएं पसंद करते हैं सूफल नंबर्स खुशखरीफ डोर मजरू जी आप पसंद करते हैं लेकिन सुनते वक्त आप एहसास नहीं करते हैं कि इस गीत इस खूबसूरत गीत के पीछे किन के हाथ है फिर भी गीत जो पेश करने जा रहा हूं रफी साहब जी और लता सॉरी नाइटिंगेल आशा जी हाँ जी आशा जी और रफी साहब जी ये लड़का हाँ ये कैसा है दीवाना Remember, this is you are, मेरे प्यारे सुनो वालों, दिल की आवाज़.

लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है भला इसको समझाना कि ये दिल जो है धीरे धीरे बेकरार होता है। जल्दबाजी आप करेंगे अतिश की फॉर्मूले इन एफ इन नहीं है। प्यार जो है ये धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे नजर से शुरू होते हैं, जुबान से कुछ बातें निकलते हैं, दिल में जाकर ये एक घंटी बजाते हैं और अगर वो घंटी बज गई तो उसके बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे आप उसमें उतरे, आप उतर जाएंगे, उतर जाएंगे तो वो दिल बिल्कुल आपके हैं। और जब तक वो नहीं होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन भोली हो आप सब, आप क्या जानते हो, लेकिन मुझको पहचानो। सपना तुम्हारा तो मैं हूं, तुम मानो या ना मानो, लेकिन नादानी से तुम दिल को कभी ना लगाना, नहीं तो आप गाएंगे ये तराना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है और होते होते देखो प्यार नहीं, मेरे प्यारे सुनने वालों ऐसे प्यार नहीं होता। प्यार के कई रूप है। लेकिन प्यार के बहुत सारे रूप है, अगर उसे पहचानोगे जो आपके लाइफ में, आपके लाइफ में वदार इन पास्ट, उसे ही इस्तेमाल करना है ना। ये था नाइटिंगेलाशा जी और हसीनों के पुजारी, सॉरी हीरस्ताद किशोर कुमार माथे स्नातुलक खेन किशोर कुमार, द लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत हम किसी से कम नहीं फिल्म का नाम। अब की बार एक रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सनल हियर ऑन यू आर, रानी मलिक और मनोहर आयर जी का जो मिलन हुआ, खूबसूरत गीत इन दोनों ने मिलकर लिखा, द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू इनकी आवाज में गीत पेश करने जा रहा हूं। दावेलिक वाली इफ स्पीकर वन सुमित्रीन से खतर वीर फकीर कि ये दोनों ने गाए हैं या और भी साथ में है। नहीं, कुमार सानू जी अकेले ही गाएंगे। पेश करता हूं फ्रॉम द मूवी मिस हस्ती खेलते, सॉरी हस्ती खेलते।

ओ यारा मेरे प्यारे जिन वालों, रानी मलिक और मनोहर आयर जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू की आवाज में हमने आप तक पेश किया है। फिल्म का नाम हंसते खेलते। स्टूडियो के बाहर हम देख रहे हैं मेरे प्यारे सुनवालों, तो थोड़ा सा धीमी धीमी बरसात हो रहे हैं, तो इस बात पर मैंने सोचा एक क्यों ना बरसात का नगमा पेश करूं। और ये गीत इतनी काफी पॉपुलर है, कतिल शफाई जी वी कैंट हैव नाउ। आप गीत सुनेंगे दानवी टू मिस इन द फिल्म, और गाने वाले शायद भी आपको मालूम होंगे, गाने वाले भी जो है इस गीत का आपको मालूम भी रहेंगे, पूजा भट्ट और नासुरुद्दीन शाह अतुल अग्निहोत्री। लेकिन ये कमाल का लिखने वाला इतनी खूबसूरत गीत वी कैंड हेम वी वेट दत्त कतिल शफाई जी इतनी खूबसूरत गीत लिखा, तो कतिल जी को हम कहेंगे हैट्स ऑफ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतनी खूबसूरत गीत लिखने का। और कुमार सानू जी की आवाज तो जादू है, इनकी आवाज में गीत पेश करता हूं मेरे प्यारे सुनवालों कि सुन सुन सुन बरसात की धुन आप सुन। रिमेंबर दिस इज यू आर दिल की आवाज, और वो भी लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से। तू जाने तो

शोला है शोला तेरी जवानी जलता दिखाए देता है पानी, जितनी ये बारिशें बढ़ती रहेंगी ठंडक दिलों को बढ़ती रहेंगी। छाया ऐसा मौसम का जादू जिसमें या जिस्मों को से आए फूलों की खुशबू, बंद के ये घुंघरू प्यार के हम आओ नाचे छुन छुन छुन, ये है कितना अच्छा सुगुन, सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन। मेरे प्यारे सुनने वालों कतिल शिफाई जी इनका लिखा हुआ ये प्यार भरा शब्द, द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू की आवाज, फिल्म का नाम सर मेरे प्यारे सुनने वालों, एक ऑल टाइम फेवरेट और पॉपुलर दर्द भरे गीत। ये प्यार भरे भी है, दर्द भरे भी है, इसको आप किस पोजीशन में रखेंगे वो आप पे हम छोड़ते हैं। संतोष आनंद जी इनका लिखा हुआ गीत, द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी और संगीत की देवी स्वयं लता मंगेशकर जी की आवाज। जिंदगी और कुछ भी तो नहीं, तेरी मेरी कहानी है। उजाला रेडियो में दिल की आवाज में यह नगमा पेश करता हूं। और रिमेम्बर, हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते www.ujala.nl।

कुछ पाकर खोना है और कुछ खोकर पाना है, जीवन का यही मतलब है। आना और जाना है, तू ढाण है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूं। तू मेरा सहारा है और मैं तेरा सहारा हूं। और तूफान को भी आना है, लेकिन ये आएगा तो चले जाना भी है। ये बादल जो है कुछ पल का है, छाकर ढल जाना है। लेकिन मेरे प्यारे सुनो वालों, आपके कर्मों का हिसाब परछाइयां रह जाती है, और रह जाती है उसकी निशानियां। ये जिंदगी और कुछ भी तो नहीं, बस तेरी और मेरी कहानी है। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनो वालों, संतोष आनंद जी का लिखा हुआ, द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी और लता जी की आवाजें। संतोष आनंद का लिखा हुआ ये गीत फ्रॉम द मूवी शोर। इस घंटे को छोड़े जाते हैं और पेश करता हूं नगमा ये।

अभिजीत और अनुराधा पौडवाल, आनंद मिलन का म्यूजिक समीर का लिखा हुआ गीत, वादा करें चलो ले ले कसम, एक पल भी मिलके जुदा ना होंगे हम। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वाले ब्रेक होंगे, और वो भी

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो नोनो द लेजेंड पटना श्री मोहम्मद रफी साहब जी। मैं देखता हूं जिधर लोग भी उठर देखें, कहां ठहरती है जाकर ये मेरी नजर देखें। और खुदा का शुक्र है कि ये चेहरा जो है नजर तो आया है, पर्दा नशी का चेहरा नजर आया है और हया का रंग निगाहों पे लेकिन फिर भी छाया है। खूबसूरत फिल्मी कवाली मेरे प्यारे सुनवालों, और अल्फाजे जो लिखा गया है आनंद बख्शी जी के जरिए, महान सॉन्ग राइटर कवि आनंद बख्शी जी, इनका लिखा हुआ गीत द लेजेंड पटना श्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज। अमर अकबर एंथोनी फिल्म का नाम, और ये फिल्म जो है मेरे प्यारे सिनेमा 1977 का है। एक डेढ़ बड़े गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे। फरियाद क्या करें हम, किसे दास्तां सुनाएं, हम दिल से जिसे चाहे उसे कैसे कैसे कैसे और कैसे भूल जाएं। वजीत और सजीत का लिखा हुआ गीत तड़बड़ा पेश करता हूं आवाज का जादू सोनू निगम।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो वालों, ब्यूटीफुल सॉन्ग जो पेश हुआ है। फरियाद क्या करें हम, किसे दांस दांस सुनाएं, हम दिल से जिसे चाहे उसे हम कैसे भूल जाएं। गाने वाले हैं सोनू निगम और खूबसूरत डर भरे गीत का लिखा वजीत और सजीत जी, फिल्म का नाम गर्फ। इतनी दर्द भरे गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों, मैंने सोचा क्यों ना एक रोमांटिक पॉपुलर सॉन्ग हो जाए। ये उजाला रेडियो है और नाम नित बाकी है सरे ना बुझने में। प्रसून जोशी जी का लिखा हुआ इतनी खूबसूरत ये गीत है, इतनी पॉपुलर। आज हमारी ये प्रोग्राम में दिल की आवाज में पेश करने जा रहा हूं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो, ये नगमा। आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, बस आप सुन लीजिएगा खूबसूरत गीत।

सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, और धीमी सी धड़कन को ढलने दो जरा, क्योंकि लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए हम तुम और हम। ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग प्रसून जोशी जी का लिखा हुआ, अलका याग्निक और बाबू सुप्रियो जी की आवाजें। रिमेम्बर दिस इज यू आर, मेरे प्यारे जनों, दो मिनट बाकी है सरे 9 बजने में, 3:04 वन हाल्फ 3 हो चला है। रविंद्र जैन जी का मास्टर कंपोजिशन, रफी साहब जी और नाइनटिंगेलाशा जी। मुझे श्याम सुहानी पूछे प्रेम।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो लो श्याम, मुझे श्याम सुहानी पूछे प्रेम कहानी, आधी है अधूरी है मैं ये क्यों बोलूं जानी, पहली पहली बार मुझे तुमने मुझको देखा जो आंखों के उस पार खींची गई गहरी रेखा। द लेजेंड पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी, रविंद्र जैन, इनका लिखा हुआ गीत, फिल्म का नाम गर्व, सॉरी मेरी बीवी की शादी। हाँ जी, बहुत सारे खैरम यहाँ है, पत से मैं बोल देता हूँ, लेकिन यह है फिल्म मेरी बीवी की शादी। What is that now here for a title? मेरी बीवी की शादी। ओके प्रिमा, खुदा की कसम खा के कहते हैं हम सनम। अगले गीत का बोल, समीर का लिखा हुआ, द नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें। Here on you are, दिल की आवाज में पेश करता हूं ऑल टाइम ग्रेट सॉन्ग।

उदित नारायण और अलका याग्निक, मेरे प्यारे सुनो वालों, खूबसूरत गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं, खुदा की कसम। खा के कहते हैं हम सनम, समीर काली खा हुआ ये गीत दोनों ने मिलकर गाए, फिल्म का नाम रंग। और एक प्यारा सा छेड़छाड़ सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, और इसमें है कि प्यार का इजहार वो कहते हैं कि कहो ना, तो बोले नहीं मैं यहां तो नहीं कहूंगा, तो फिर कहां कहोगे, तो किसी और जगह ले चलो ना। रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुन वालों, आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ। हियर ऑन यू आर किशोर कुमार, हसीनों की पुजारी किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें।

यहाँ नहीं कहूंगी तो फिर कहाँ कहोगी। अरे भैया किसी और जगह ले चलो ना रे। लो सुनो तो चलो मेरे प्यारे से ना एक बहुत ही खूबसूरत गीत सेवा में जो हमने पेश किया है। ये गीत का जो सिंगर है हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी। फिल्म का नाम मिस्टर रोमियो और द ग्रेट आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ गीत आप तक हमने पेश किया है। अबीर मुखर्जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग अब की बार दिल की आवाज में ये रानी बार पेश करता हूं। तेरे बिना क्या है हम जीना मरना संग संग। हमें जीना मरना है संग संग और तेरे बिना क्या है।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू अबीर मुखर्जी, इनका लिखा हुआ गीत। इस घंटे का आखिरी गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, द नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण और अलका याग्निक, इन दोनों की आवाजें और समीर का लिखा हुआ गीत फ्रॉम द मूवी राजा। ये गीत के बाद ब्रेक मेरे प्यारे सुनो, ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर नतुलक हम मिलेंगे। ये है उजाला रेडियो, दिल की आवाज।

चुरा लिया है तुमने जो दिल को और बदल ना जाना तुम ओ सनम, और बदल के मेरी ये तुम जिंदगानी कहीं तुम भी ना बदल जाना ओ सनम। मजरू सुल्तानपुरी जी इनका लिखा हुआ ये पॉपुलर सॉन्ग। नंदीगिल आशा जी और रवि साहब जी की आवाजें। फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों, यादों की बारात। और ऐसे भी है मेरे प्यारे सुनने वालों लोग इस जिंदगी में जो प्यार भी करना चाहते हैं लेकिन उसे प्यार नसीब नहीं होता। और ये बातें रहे रहे और खास करके रातों में अंधेरों में पेट पर लेते हुए ये बात उन्हें खाई जाता है कि कैसे सभी को प्यार मिलता है और मुझको क्यों नहीं। अदनान सामी खान मेरे प्यारे सुनने वालों, द ग्रेट समीर का लिखा हुआ गीत चैन मुझे अब आए ना, और जुदा होकर तेरे बिना भी जिया जाए ना।

चैन मुझे अब आये ना और तेरे बिना जिया जाए ना, सिली सिली प्यासी ये रहना, आके बिगाड़े नैना। समीर का लिखा हुआ ये गीत एल्बम से निकाला हुआ ये नगमा, एल्बम 2002 का है, तेरा चेहरा एल्बम का नाम और अटनन सामी खान की आवाज। रिमेम्बर दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनो, उजाला रेडियो पर आप चुन किए हुए हैं। अगले गीत को हम पेश करने जा रहा हूं मुकेश जी का एक नगमा, वर्मा मलिक जी का लिखा हुआ, माइकवेल वाली स्पीकर। हाँ जी, मुकेश जी गीत गाएंगे और अभी कुछ पुराने नगमाए और भी सेवा में जो पेश किया जाएगा। हियर ऑन यू आर दिल की आवाज में।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, इधर इंतजार उधर इंतजार, तू है बेकरार मैं हूँ बेकरार। द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी की आवाज, वर्मा मालिक जी का लिखा हुआ गीत। और फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों, ये भी फिल्म का नाम इंतजार है, इंतजार। घर की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुनने वालों, यूआर का स्टूडियो का तेज जो है नौ मिनट बाकी है सरे 10 बजने में।

एक नगमा। कभी कभी ऐसा होता है ना जिंदगी में कि आप किसी को देखें, वो आपको देखे, इतनी खूबसूरत है वो, और आप सोचते होंगे या एक फिर सो मोई, लेकिन हमारा जो प्यार है इम्पॉसिबल है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये प्यार पॉसिबल होता है। अन्विता गुरुदत्त गुप्तन जी का लिखा हुआ गीत, एक गीत जो थोड़ा सा छेड़छाड़ है, लेकिन मतलब इस गीत का बहुत है कि प्यार है। विशाल दत्तलानी और डोमिनिक सेरोजो, इन दोनों की आवाजें दिल की आवाज में पेश करता हूं ये नगमा कि लव इम्पॉसिबल।

Ja, beautiful song, meri pjerisino. Or Vishal Datlani. Or Dominic Sarijo. Film ka naam Pyar Impossible. Mooie film hoor. Or ye geet ka title song. Hum aapko le chalenge ab ki baar. Or yahan se kuch purane nagmaye. Is program Dil Ki Awaaz ke end tak कुछ पुराने नगमे के साथ आपका दिल हम बहलाएंगे. आनंद बख्शी जी महान कवि, इनका लिखा हुआ गीत डॉट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी को पेश करता हूं. कोई कोई आदमी दीवाना होता है,

कोई कोई आदमी और वो भी दीवाना होता है, और मुश्किल को इस नादान को समझाना होता है। द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी, इनकी आवाज में खूबसूरत गीत पेश किया गया है। अब की बार गीत मेरे प्यारे सुनो लो, रफी साहब जी और लता मंगेशकर जी की आवाजें, फिल्म धरती का नगमा और व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, हीरा निवार पेश करने जा रहा हूं।

ये अलबेली प्यार की राहें और ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे और आज भी है ये हंसते हंसते. रिमेम्बर दिस इज यू आर और खूबसूरत गीत लता जी और रवि साहब जी ने मिलकर गाए हैं. महान कवि राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ गीत ये उजाला रही जो है. मेरे प्यारे सुनो, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल की आवाज. हम थे जिनके सहारे और वो भी ना हुए हमारे, और डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे. पेश करता हूं ये नगमा, हियर ऑन यू आर दिल की आवाज में.

भूलूंगा और मैं ना भूलूंगी, पॉपुलर सॉन्ग मेरे प्यारे सुनोलो, संतोष आनंद जी का लिखा हुआ एक एक शब्द मिलकर गीत गाए हैं हार्ट ऑफ मिलियंस मायते मुकेश जी और संगीत की देवी लता जी। रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का नाम। ये अलबेलिए प्यार की राहें, इज्जत हो लाओ इस स्पीकर या अतिजल सो। एक खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनो लो, लता जी और रफी साहब जी की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ गीत और संगीतकार है शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम धरती। धरती मूवी से गीत हम निकालेंगे और हियर ऑन यू आर हम गीत पेश करेंगे आप सभी प्रिय सुनने वालों के लिए।

ये अलबेली प्यार की राहें और ये जाने पहचाने रस्ते। खूबसूरत गीत है मेरे प्यारे सुनने वालों, हमने आप तक पेश किया है लता जी और रफी साहब जी की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ ये खूबसूरत गीत फ्रॉम द मूवी धरती। आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों और इस गीत के बाद हम यहां से रुखसत होंगे। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेंबर आई लव यू ऑल। बाय। रफी साहब जी की आवाज में गीत आप तक पेश कर रहा हूं। मेरे गीतों का सिंगार

0: Hi.
1: You are.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Assalamu alaikum, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो. उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे. और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए.

हे सुनो वालो, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार खुशी और मस्ती मिलता है।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पे देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको, इसे बताते ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतु में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो